0: Hours FM. 99.8 Hours FM.
1: पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: So, we need a new jingle, Ellie. We've got to get in that studio and produce a new jingle.
11: अपने काम धंधे व कारोबार को मशहूर और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आवाज FM रेडियो पर। बुकिंग के लिए FM के अलावा आप सुन सकते हैं www.awazfm.com पर। स्पॉन्सर कीजिए शब्द कीर्तन भजन या कोई भी हिंदी व पंजाबी प्रोग्राम। बनाइए अपने बिजनेस की पहचान दुनिया के कोने कोने में।
12: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
0: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz 9.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: I know. How do we get finish listeners?
4: I don't know.

0: How do you say it? A was or a waz?
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
10: इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो
11: जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है इससे ज्यादा और क्या चाहिए

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Two straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start game.
3: The Behind the Mic Show.
4: Tune in every Monday
3: from 1 till 3. Sporting waffle and absolute nonsense.
2: Talking about sport.
4: On Awaaz 99.8 FM.

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: हेलो, हाउ आर यू? मी यासर। You play any good song for me? Yeah, thank you.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

0: Assalamu alaikum. It's really nice to listen to your show. Some of the stuff you talk about is very intellectual in different languages, but I get the gist of most of it, and I like listening to the different tunes that you play.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: two straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start again.
1: The Behind the Mic Show.
2: Tune in every Monday
1: from 1 till 3. Sporting waffle and absolute nonsense. Talking about sport.
2: On Awaz 99.8 FM.
3: एक पल की लापरवाही।
4: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Get your favorite song on the radio. Contact us now.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more. Controlling transmission.

0: इस गाना हमारी पसंद नहीं, हमारा फेवरेट
1: एक
0: गाना
1: पल
0: हमारा।
1: की लापरवाही। आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: Now, your favorite music, right here, your favorite radio station.
11: Ours FM. Ours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website oursfm.co.uk.
12: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
13: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on
0: 99.8. India na gaana purana.

0: I'm going to show you the message again, and you can't do my birthday, you will get a surprise.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hi, Susie Perry here. Things I love. Cars, tick. Gadgets for cars, tick. Digital radio, tick. With more digital radios and adapters available than ever before, there's never been a better time to convert your car. Any car can be converted, and if you need help, there are now registered digital radio tick mark installers at independent retailers and Halfords.
4: To find your nearest registered digital radio tick mark installer, visit getdigitalradio.com/installers.
3: If you love radio, go digital.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: From St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours FM.

तुम्हें ऐसे कितने दिन याद है रॉय? योर फर्स्ट जॉब, पहला सूट, पहली सैलरी, जब तूने एक लड़की को पहली बार छुआ, पहली बार चूमा, जब पहली बार तुम्हारा दिल धड़का रॉय।

0: I am a big fan, long-time listener, first-time caller.
1: You certainly are. You certainly are.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver.

0: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.
1: मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM.

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: जस्ट बिकॉज आई एम अ ड्राइवर डजंट मीन आई कैन सी यू।
1: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ एफएम के साथ।

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: ध्यान सॉरी बच्चों मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Your number one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music. Oh yeah. We are your number one radio station. We only play the hits.
3: Ours FM.

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया, बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.

0: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: Har maa ke liye uska bachcha special hota hai. Aur ek taraf meri maa. जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।

0: Awaaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: So, we need new jingle, Ali. We got to get in that studio and produce new jingle.

सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का बहरा, कोई रोक न पाएगा इसे जब उठे ये बन के सवेरा।

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: www.aeroplane.co.uk.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। I could drive.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: How do you say it? A was or a was?
3: Assalamu alaikum. My name is Joshua. And can you please play a song for me and my papa? My name is Joshua and my papa name is Amir.

अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी बुलाए चले आएंगे। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। ये था मूवी जौहर महमूद इन गोहा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहां कि आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और अगर इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07784691440। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए लेकर आया हूँ, पेश कर रहा हूँ ये प्यारा सा गीत। मूवी का नाम है पूजा का, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ मला सिन्हा की आवाज़ से ये बहुत ही प्यारा से ये गीत, बंदा परवर, रात के अंधेरे में यू चोरी चोरी चले किधर। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए पेश किया है। बंदा परवर रात के अंधेरे में यू चोरी चोरी चले किधर, माला सिन्हा की आवाज से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपको आपके लिए पेश किया। मूवी का नाम था पूजा का फूल। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और आपको इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ के आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। अपना कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। यह है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, ये स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है, और आपके मैसेजेस का इंतजार होता है। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी चोरी चोरी, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत आजा सनम मधुर चांदनी में हम। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1956 की रिलीज मूवी चोरी चोरी, इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत आजा सनम मदनु चांदनी में हम। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1956 से आपने सुना अभी चोरी चोरी मूवी से आजा सनम मधुर चांदनी में हम। अब चलते हैं कुछ 1970s की तरफ, और चलते हैं अब 1979 की तरफ, और चलते हैं मूवी सरगम। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत दफली वाले दफली बजा। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

दफली वाले दफली बजा मूवी का नाम था सरगम 1979 की रिलीज और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम की मीट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। अब तक के जो गीत सुने उम्मीद करता हूँ कि आपके पसंद के होंगे और अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं 07786914040। और इस वक्त अगर आप फ़ोन कर रहे हो और फ़ोन बिजी जा रहे हैं तो ऑप्शन 4 दबाएं, ऑप्शन 4, और ऑप्शन 4 के जरिए आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और इस वक्त आपके लेके जा रहा हूँ 1966 की तरफ, और 1966 की तरफ जाते हैं मूवी देवर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़ से ये अगला गीत दुनिया में ऐसा कहीं सबका नसीब होता है। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: वेलकम बैक टू आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो। आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 02381980072 पर, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए 07786914400। प्रोग्राम को जारी रखते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ से। एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूँ, मूवी का नाम है संगम। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो। आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मूवी का नाम है संगम और आवाज़ है मुकेश।

0: नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: चाचा

बहुत ही जबरदस्त एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया। ये मूवी का नाम था संगम और गीत था बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381 9800 72। आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी कोहिनूर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। आवाज़ है आशा भोसले और मूवी का नाम है कोहिनूर 1960 की रिलीज। एंजॉय कीजिए ये अगला गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर। कई मजा ये सुनते रहिए आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1960 की रिलीज मूवी कोहिनूर से ये गीत हमने लिया, जादूगर कातिल। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आए होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं 07784691440। और अगर मैसेज होना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072 और ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4, इसी ऑप्शन से आप हमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा हूँ मूवी का नाम है हवास। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो।

बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए पेश किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे सनम कदम आज के बाद, मूवी का नाम था हवास। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम की मिनट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह कल आपके लिए पेश करूंगा सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करूंगा पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आज आप हमारा साथ दे रहे हैं, कल भी आप हमारा साथ देंगे और मिलके हम एंजॉय करेंगे पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा हूँ ये अगला गीत, मूवी का नाम है बाबुल, 1950 की रिलीज, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कई मजा ये सुनते रहिए आवाज़ एफ एम की मीटर रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफ एम।

1950 की रिलीज से ये मूवी बाबुल और इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381-9800-72। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914040। और अगर फ़ोन का मैसेज छोड़ना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381-9800-72 और ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4 दबाएं और वहां से मैसेज छोड़ दें। और जैसे आपका मैसेज मिले तो आपके लिए आपका मनपसंद जो गीत है वो भी लगा सकते हैं। आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और एक बार फिर आपके लिए पेश करता हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत और ये है जो दिल में खुशी बनकर आए। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत आपने सुना जो दिल में खुशी बनकर आए। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। यह था एक बहुत ही ज़बरदस्त एवरग्रीन गीत जो आपने सुना जो दिल में खुशी बनकर आए, लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अब अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये एक और एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूँ और ज़बरदस्त आपके लिए गीत पेश करता हूँ एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज़ से। मूवी का नाम है बॉबी और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये एक एवरग्रीन गीत, झूठ बोले कौवा काटे। आइए चलते हैं इस प्यार से गीत की तरफ और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

0: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
10: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
11: वेलकम बैक टू आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर मैं हूं आपका होस्ट अली और आप इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत जहां कि आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे तो आइए चलते हैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं 1955 की तरफ चलते हैं और मूवी उरंग कटोला इसी मूवी से के लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा एवरग्रीन गीत ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार कहीं मत जाइए सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम

0: लो।
1: मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत। मूवी का नाम था उरंग कटोला, 1955 की रिलीज, और बोल थे ना तूफान से खेलो, आवाज थी मोहम्मद रफी साहब। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आए होगा। ये था एक एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। चलते हैं अब एक और एवरग्रीन गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ आवाज़ लता मंगेशकर जी, और इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। मूवी का नाम है अन्नारी, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत तेरा जाना। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

लता मंगेशकर की आवाज से ये बहुत ही जबरदस्त एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया, तेरा जाना दिल के अरमानों से लुट जाना, और मूवी का नाम था अनारी। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आवाज़ ऑफ इंक्यूमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। जब बात हो रही है एवरग्रीन गीत की, तो आपके लिए पेश करता हूँ एक और एवरग्रीन गीत जो कि है आवाज़ मुकेश। और कहा जाता है कि ये मुकेश की आवाज़ से ये अगला गीत जो है ये उसका मोस्ट फेमस गीत था। तो आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत 1961 की मूवी प्यार का सागर, इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ से, सदा खुश रहे तू जफा करने वाले। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

रेडियो आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। इसी तरह आपके लिए पेश करता हूं एवरी संडे आपके लिए पेश करता हूं सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करूंगा 1947 से लेकर 1990s पाकिस्तानी प्यारे से नगमे। और उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आज आपने हमारा साथ दिया, इसी तरह कल भी आप हमारा साथ देंगे। याद रखें सुबह 10 से 12 बजे तक आपके लिए पेश करूंगा सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत 1947 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और एक बार फिर आपके लिए पेश करता हूँ मूवी संगम, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। एक बार फिर एक एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूँ, ये मेरा प्रेम पत्र। आइए सुनते हैं ये प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कई मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

मूवी संगम से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपके आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, और अगर लाइन पे ना कोई हो तो बिजी हो अगर लाइन, तो ऑप्शन 4 दबाएं और वहां से अपना मैसेज छोड़ दें। इस तरह अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400। चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए लेके जाता हूँ 1957 की तरफ, और 1957 की मूवी नया दौर, इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत रेशमी सलवार कुर्ता जालीदा। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। चलते हैं अगले गीत, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
1: Radio. The medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: Ek pal ki laparwahi. Aapki laparwahi kisi ke khwabon ko hamesha ke liye adhoora chhod sakti hai. Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. Ghar par aapka koi intezar kar raha hai.
12: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
13: वेलकम बैक टू आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो. आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर. मैं हूं आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक. और उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे. इसी तरह चलते हैं अब अगले गीत की तरफ. एंजॉय करते हैं कुछ और मज़ेदार गीत. 1949 की तरफ चलते हैं और मूवी का नाम है पतंगा. इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा जबरदस्त एवरग्रीन गीत. एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, मेरा पिया गया रंगून. आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार.
14: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ. मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ. हाँ हाँ

1949 की रिलीज मूवी पतंगा, इसी मूवी से आपके लिए पेश किया है ये प्यारा सा गीत। रोमांटिक और कॉमेडी मूवी पतंगा से, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द हिंदी बॉलीवुड सिनेमा फ्रॉम 1949। आवाज़ थी चितलकार रामचंद्रा और शमशाद बेगम। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और सामिन, अभी तक हम 1990s या 1980s की तरफ इतना गीत नहीं सुने, तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ 1981 की मूवी लावारिस, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये ज़बरदस्त कॉमेडी और रोमांटिक गीत, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एंड मूवी का नाम है लवारिस 1981। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: और जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे यंगने में, हाँ मेरे यंगने में, हाँ मेरे यंगने में तुम्हारा क्या काम है।
1: जी हाँ, मेरे अंगन नेम है तुम्हारा क्या काम है। और ये था गीत मूवी लावारिस, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह आपके जो मनपसंद गीत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 ऑप्शन 4 दबाएँ, और वहां से अपना मैसेज छोड़ें, और अगले प्रोग्राम्स में आपका मनपसंद गीत जरूर शामिल करूंगा। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त चलते हैं, रुकते हैं अभी, मेरे ख्याल में रुकते हैं 1980s और 1990s की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूं ये एक और प्यारा सा गीत, मूवी का नाम है सौदागर, और कविता कृष्ण मूर्ति, उदित नारायण की और सुखविंदर सिंह की आवाज़ से ये अगला गीत आपके लिए पेश करता हूं, इलू इलू। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

1991 की मूवी सौदागर से आपके लिए पेश किया है ये प्यारा सा गीत इलू इलू, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। सभी प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कल आप मेरा साथ देंगे प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करूँगा पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। चलते जाते आपके लिए पेश करता हूँ ये आखिरी गीत 1994 के, चलते हैं मूवी मोहरा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ पंकज उदास और सदना सरगम की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत ना गजरे की दार। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा, और इसके साथ साथ अली को दीजिए इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट जॉइन मी टुमारो ऑन सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
1: Radio, the medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
3: आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: एक पल की लापरवाही
5: अंकल मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था पायलट बनना था मुझे बड़ी ओपन डॉक्टर बनना था मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
5: Barra Drums from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 PM. Only on Awaaz 99.8 FM. See you then.

0: Hop on, rewind, repeat. One wild ride. Retro Rickshaw, every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: अब वक्त है हमारे फीचर का और आज का फीचर हम राज कपूर के नाम मंसूब करते हैं क्योंकि राज कपूर जी 14 दिसंबर को इस दुनिया में आए थे और 2 जून को चले गए और ऐसे महान फनकार के लिए उन्हें हदिये अकीदत और श्रद्धा के फूल भेंट करना एक कुदरती बात है। बीच में उनके वही गाने पेश किए जाएंगे जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे जब तक कि हम उनकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर लेते। लिहाजा एक नहीं बल्कि इस सिलसिले में इस लड़ी के कई फीचर होंगे राज कपूर के बारे में और आज का ये पहला फीचर हाजिर खिदमत है। 14 दिसंबर का दिन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की एक अजीम शख्सियत, एक नामवर हस्ती, एक पुरवकार फनकार के नाम मंसूब है। फिल्मी दुनिया के आसमान पर एक दरख्शा सितारा नमूदार हुआ था जिसकी रोशनी से जमीन और फलक दोनों मुनव्वर हो गए थे। एक फनकार ने इस धरती पर जन्म लिया था। 14 दिसंबर सन 1924 को राज कपूर का जन्म हुआ। पृथ्वी राज कपूर और रमा कपूर के घर बेटा पैदा हुआ था जो बड़ा होकर ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया बना। कपूर खानदान का नाम रोशन किया, उसकी शोहरत का डंका दुनिया के कोने कोने में बजने लगा। आज तक उनका कोई सानी न मिल सका। कपूर खानदान का ये चिराग 2 जून 1988 को तेज आंधियों का मुकाबला करते करते गुल हो गया। फिल्मी दुनिया की इस बेमिसाल हस्ती के मालिक को अकीदत के फूल भेंट करते हैं, श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनके बचपन, जवानी और आखिरी मंजिल के साथ साथ उनके काम पर भी नजर डालेंगे जिसकी बदौलत राज कपूर मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी मुकम्मल जिंदगी की तस्वीर में रंग भरेंगे और ही अमर दास्तान बयान करने के लिए कई किस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। लिहाजा आज पहली किस्त हाजिर खिदमत है।

बचपन में राज कपूर काफी गोलमटोल थे। दूसरे बच्चे इन पर तानाजनी किया करते थे। राज कपूर को फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का बेहद शौक था, मगर मोटापे की वजह से कोई भी गेम खेलने का मौका ना मिलता। राज को फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों से कोई भी गेम खेलने का मौका ना मिलता और इनके खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म्स बहुत अच्छी लगती। उन्हें यह भी इल्म था कि इन खिलाड़ियों को मैच के बाद खाने के लिए सैंडविचेस और पीने के लिए लेमनेड भी मिलता है, इसलिए वो झंडी उठाकर लाइन्समैन बनने पर ही बहुत खुश थे। एक शौक पूरा हो जाने के बाद स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेने की उमंग जाग उठी। पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के नाते उसे अपना हक समझने लगे। हर साल ईस्टर के दिनों नाटक हुआ करता था जिसमें एक्स्ट्रा का रोल मिल ही गया। अपना रोब पहन रखा था कि वापसी पर पांव उलझ गया और स्टेज पर गिरकर एक निहायत संजीदा किस्म के सीन को मजाक में बदल दिया। पर्दा गिरने के बाद खूब मरम्मत की गई। राज कपूर की तालीम देहरादून में कर्नल ब्राउन स्कूल में शुरू हुई, फिर कलकत्ता में और फिर बंबई में। कलकत्ता में टूटी फूटी बंगला जुबान भी बोलना शुरू कर दी थी। बंबई में गिरगांव के मराठी स्कूल में मराठी भी सीखी। बाद में एंटोनियो डिसोजा स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। मैट्रिक में फेल हो गए। पृथ्वीराज ने कहा, कोई बात नहीं, अगले बरस फिर कोशिश करना। मगर बाप को बेटे की तरफ से जवाब में एक साथ कई सवाल मिले। देखो पिताजी, जब कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेडिकल कॉलेज जाता है, जब वो वकील बनना चाहता है तो वो लॉ कॉलेज जाता है, लेकिन मैं तो फिल्में बनाना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बेटे की इस परवाज के सामने बाप को झुकना ही पड़ा।

दूसरे ही दिन सरदार चंदूलाल शाह की जेरे निगरानी केदार शर्मा के साथ थर्ड असिस्टेंट की हैसियत से रंजीत स्टूडियोज पहुंचा दिया गया। फिल्म डायरेक्शन की तरफ तवज्जो बदल गई, मगर पापा जी पृथ्वीराज के कहने के मुताबिक काफी सख्ती से काम लिया जाता था। उन्हीं दिनों पृथ्वीराज फिल्म गौरी की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें राज को एक छोटा सा रोल दे दिया गया था। लेकिन इससे पहले जब कपूर खानदान कलकत्ता में था और पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर्स के एक स्टार भी थे, तो उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर देवकी बोस ने अपनी फिल्म आफ्टर द अर्थक्वेक में राज कपूर जी को बच्चे के एक छोटे से रोल के लिए ले लिया था, जिसके बाद एक्टर डायरेक्टर गुल हमीद ने भी अपनी एक फिल्म में इन्हें लिया था। पापा जी राज जी को एक कामयाब चाइल्ड स्टार नहीं बनाना चाहते थे। स्टूडियो लाइन में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, उल्टी सीधी बातें भी हुआ करती हैं। फिल्म विषकन्या की शूटिंग के दौरान एक एक्टर का क्लोजअप लेना था, जिसके चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा रखी थी। राज को क्लैप देना था और दाढ़ी के नजदीक क्लैप बोर्ड रखकर जोर से क्लैप दिया और जल्दी से मुड़ बैठे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक्टर की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में फंस कर रह गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से राज कपूर को रंजीत स्टूडियोज, बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियोज में काम करना पड़ा था। केदार शर्मा के बाद अम्य चक्रवर्ती, एस मुखर्जी काम करना पड़ा था। केदार शर्मा के बाद अम्य चक्रवर्ती, एस मुखर्जी

फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर तो बन गए, मगर खुद कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने की तड़प दिल में हमेशा लगी रहती। फिल्म बेगम बनी, जिसमें अशोक कुमार और नसीम बानो यानी सायरा बानो की वालिदा मोहतरमा की स्टार कास्ट थी। डायरेक्टर थे शील माजुमदार। उन्होंने राज कपूर का टैलेंट आजमाने की खातर जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। राज कपूर की तमन्ना पूरी हो गई और शील जी की तसल्ली भी हो गई। कहने लगे, ये लड़का एक दिन बड़ा होकर बड़ा नाम कमाएगा। फिल्मों की तरफ तवज्जो जारी रही, लेकिन साथ ही साथ स्टेज की तरफ भी खिंचते चले गए। पृथ्वी थिएटर्स उनका निशाना था और घर की बात थी। आपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के असिस्टेंट बन गए और थिएटर की जिम्मेवारियों में आपने पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया।

पृथ्वी थिएटर्स में थिएटर के हर शोबे यानी महकमे में दिलचस्पी ली और पिताजी ने उनकी तनख्वाह 201 रुपया फी महीना मुकरर कर दी। अब आप 1 रुपए की बात जरूर करेंगे और अब वजह भी पूछेंगे। दरअसल बॉम्बे टॉकीज में राज जी को 200 रुपया तनख्वाह मिलती थी और पिताजी ने 1 रुपए की तरक्की देकर राज का दिल बढ़ाना चाहा था। पृथ्वी थिएटर्स भी पृथ्वीराज कपूर का एक सुंदर सपना था जो सन 1944 यानी 1944 में वजूद में आया। पृथ्वीराज का मंसूबा था कि वो अपने बच्चों को सिनेमा के लिए पहले थिएटर की ट्रेनिंग देंगे। पृथ्वी थिएटर्स के साथ साथ जयकिशन, हसरत जयपुरी, मोहन सहगल और रमेश सहगल वगैरह के नाम भी मशहूर थे। पृथ्वी थिएटर्स की पहली पेशकश मशहूर नाटक शकुंतला था जिसमें राज कपूर को एक छोटा सा कॉमेडी रोल मिला और आपने दर्शकों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली।

चलिए जरा फिल्मों की तरफ चलते हैं। कलकत्ता में सन 1935 में न्यू थिएटर्स ने फिल्म इनकलाब बनाई थी, जिसमें राज कपूर जी को चाइल्ड स्टार बनाकर पेश किया गया था। उसके बाद एक नौजवान की हैसियत से आपकी पहली फिल्म वाल्मीकि थी, जिसमें टाइटल रोल आपके पिता श्री ने किया था। आपने नारद का रोल अदा किया और जिंदगी का पहला अवार्ड भी जीता। यूं तो जिंदगी भर अवार्ड्स ही जीतते रहे, जिनकी चर्चा हम बाद में किसी दूसरे प्रोग्राम में करेंगे। ये सन 1947 की बात है कि फिल्मी दुनिया में कपूर खानदान के इस नीली नीली आंखों वाले खूबरू नौजवान राज कपूर ने बतौर फिल्मी हीरो लोगों के दिलों में घर पैदा कर लिया था। एक साथ चार चार फिल्में रिलीज हुई, चिताउड़ विजय, दिल की रानी, जेल यात्रा और नीलकमल। इनमें राज की हीरोइनें थीं मधुबाला और कामिनी कौशल।

0: न जाना।
1: एक बार फिर थिएटर की दुनिया में वापस चलते हैं। पृथ्वी थिएटर्स के नाटक दीवार में राज जी का लीड रोल था और खेल खत्म होने पर सबसे ज्यादा तालियां राज जी को मिली थी। हॉल में बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, सबने वाह वाह की और अश अश कर उठे। इनमें चंदूलाल शाह, मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू रॉय, फिल्म मेकर मास्टर विनायक के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। इन सब ने राज कपूर के अंदर एक महान फनकार को झांक कर देखा। मास्टर विनायक ने कहा कि कपूर खानदान का ये चिराग, बड़ा बेटा एक दिन बहुत बड़ा फनकार बनेगा, स्टार बनेगा। मास्टर विनायक एक्ट्रेस नंदा के बाप हैं। राज कपूर को गाने का शौक भी बचपन से ही था। खेल दीवार के गाने भी उन्होंने खुद ही गाए थे और अक्सर स्टेज के वैरायटी प्रोग्रामों में भी वो खुद ही गाया करते थे।

पृथ्वीराज कपूर ने एक जगह लिखा है कि आपने बहार रिलीफ फंड के लिए एक वैरायटी प्रोग्राम किया था और हस्ब मामूल प्रोग्राम खत्म होने पर जब लोगों से मदद के लिए कासा उठाया तो लोगों ने ज्यादा दाद ना दी। राज गुस्से के मारे तड़पने लगा, माइक्रोफोन पकड़कर अपनी एक फिल्म के दो गाने गा डाले और लोगों ने खुश होकर इतनी मदद की कि दिल बाग बाग हो गया। इसी तरह 1943 में भी राज कपूर ने एक बार अपने दिल के तूफान को ठंडा करने के लिए खुद ढोलक बजाकर गाना शुरू कर दिया। जबकि वो सड़क के किनारे पर बैठे थे तो लोग इस तरह जमा हो गए जैसे वाकई किसी हीरो की खुशामद कर रहे थे।

अब राज कपूर फिल्म हीरो बन चुके थे और पृथ्वी थिएटर्स का साथ भी नहीं छोड़ा था। दरअसल थिएटर की दुनिया में ही उनकी मुलाकात इंदर राज आनंद और यही वो जगह थी जहां पर दो शायरों से भी मुलाकात हुई, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी।

सर राज कपूर बचपन से ही आशिक मजाज साबित हुए। 1945 में हैदराबाद से एक डांस ट्रूपे बंबई आया था जिसने पृथ्वी थिएटर्स पर डेरा डाल दिया था। इस मंडली की डांसर थी जिसका नाम हेमावती बताया जाता था, जिसकी उम्र लगभग 18-20 बरस की थी। इसने खेल दीवार में राज कपूर के सामने हीरोइन का रोल अदा किया था। इश्क की चिंगारियों को वहीं से हवा मिलने लगी। जब राज की शादी 1946 में हुई तो हेमावती ने पृथ्वी थिएटर्स को अलविदा कह दिया। ये वही हेमावती हैं जिन्होंने बाद में मशहूर एक्टर सप्रू से शादी कर ली थी। लेकिन ये भी मालूम हुआ है कि 1943-44 के दौरान बॉम्बे टॉकीज के दिनों में ही राज जी की एक दोस्त थी जिसका नाम था दीदो, और वो भी कपूर थी इसलिए शादी मुमकिन ना हो सकी। लेकिन जिस तरह सुनने में आया है, पहला पहला प्यार दरअसल सच्चा सच्चा प्यार होता है। दीदो राज कपूर के आखिरी वक्त में भी उनसे मुलाकात करने अस्पताल गई थी।

राज कपूर की शादी पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की बेटी कृष्णा जी के साथ 12 मई 1946 को हुई। एक साल बाद 15 मई 1947 को राज कपूर एक बेटे के बाप बन चुके थे। डिब्बू यानी रणधीर कपूर ने अपनी आंख खोली थी। इसी बरस अप्रैल के महीने में नागपुर में बैठे फिल्म आग की कहानी ने जन्म लिया। राज कपूर ने अपनी खुद की आप बीती को पर्दे स्क्रीन पर पेश करने के लिए इंद्रराज आनंद को पकड़ा। सुना है कि उन दिनों राज जी का कोई दफ्तर वगैरह नहीं था, उनके पास एक फोर्ड गाड़ी थी और ये उनकी पहली कार थी जिसका नंबर था REWA347 और ये उसी दिन खरीदी थी जिस दिन डब्बू पैदा हुए थे और यही राज कपूर का पहला दफ्तर था।

फिल्म आग का मुहूर्त 6 फरवरी 1947 को हुआ और 6 जुलाई 1948 को पर्दे स्क्रीन की जीनत बनी। इसका प्रीमियर शिमला में हुआ था। इस फिल्म पर 3.5 लाख रुपए की लागत आई। उन दिनों के हिसाब से बहुत महंगी फिल्म बनी थी। इस फिल्म को बनाने वाले तमाम राज कपूर के हम उम्र थे। इस फिल्म में 3 हीरोइंस थी, कामिनी कौशल, निगार सुल्ताना और नरगिस। नरगिस से राज कपूर की पहली मुलाकात नरगिस की वालिदा जद्दनबाई के मकान पर हुई। सुना है जब राज के लिए वो दरवाजा खोलने आई तो एक लम्हा भर के लिए दो जवान दिलों की धड़कने रुक गई थी। और यही वो सीन था जो राज जी ने फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल को इंट्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया। ये था राज कपूर की जिंदगी के बारे में फीचर का पहला एपिसोड और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
11: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
12: गाने सुने अनसुने गजेंद्र खन्ना के साथ।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस गाने सुने अनसुने कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। 26 सितंबर को ही मशहूर अभिनेता धर्मदेव पिशोरीमल आनंद जी यानी देवानंद जी का 99वां जन्मदिन था, यानी उनकी जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना उन पर एक दो कड़ी का कार्यक्रम किया जाए, एक और अनेक, जिसमें उनको प्लेबैक देने वाले विभिन्न गायकों के गीत सुनाए जाए। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है द वॉइसेस ऑफ देवानंद। आशा करता हूँ कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। देवानंद साहब की शुरू की दो तीन फिल्में इतना नहीं चली, लेकिन लाइमलाइट में वो आए जब पर्दे पर उनके साथ आ गई थी सुरैया जी, और ये शुरुआत हुई थी फिल्म विद्या के साथ जो 1948 में आई। आमतौर पर देवानंद जी के साथ हम मुकेश जी का नाम नहीं जोड़ते, लेकिन इस फिल्म में मुकेश जी ने ही उनके लिए गाया था। तो आइए सुनते हैं विद्या फिल्म का गीत। आवाजें हैं मुकेश और सुरैया की, संगीत है एसडी बर्मन साहब का, और बोल हैं अंजुम पीलीभीटी के।

वैसे तो देवानंद साहब ने सुरैया जी के साथ कई फिल्में करी, पर आज के कार्यक्रम में मैं सिर्फ एक ही फिल्म का गीत और शामिल कर पाऊंगा, जो है फिल्म जीत से। इस गीत का संगीत दिया था अनिल विश्वास साहब ने और प्रेम धवन के बोल थे। इस युगल गीत में शंकर दास गुप्ता जी ने देवानंद के लिए प्लेबैक दिया था और ये गीत मुझे निजी तौर पर भी काफी पसंद है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

देवानंद साहब ने अपने करियर में अपने जमाने की टॉप हीरोइंस के साथ हमेशा काम किया। खुर्शीद और सुरैया जैसी टॉप हीरोइंस के साथ काम करने के बाद 1950 में आई थी फिल्म दिलरुबा, जिसमें उनके ऑपोजिट थी चुलबुली अभिनेत्री रेहाना। उसी फिल्म का एक युगल गीत आपके सामने अब आने वाला है, जिसमें देवानंद साहब के लिए प्लेबैक दिया था जीएम दुरानी साहब ने, और रेहाना के लिए प्लेबैक दे रही हैं उस जमाने की नामी गायिका गीता रॉय। इसका संगीत दिया था दिग्गज ज्ञानदत्त साहब ने और बोल लिखे थे उभरते गीतकार एसएच बिहारी साहब ने। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

1950 के शुरुआती वर्षों में देवानंद साहब को अपने जीवन की हीरोइन भी मिल गई थी। वो थी कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंगा था। फिल्म बाजी में पहली बार उन्होंने साथ काम किया और अगले 3-1 वर्षों में दोनों साथ काम करते रहे और प्यार हो गया दोनों को। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही इन्होंने शादी कर ली थी। उसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको मैं सुनाने वाला हूँ। इस गीत में उस जमाने के टॉप प्लेबैक सिंगर तलत महमूद साहब ने देवानंद साहब के लिए गाया था। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन साहब का संगीत। आनंद लीजिए इस एवरग्रीन गीत का।

सचिन दा ने कई प्लेबैक सिंगर्स को देवानंद के लिए उपयोग किया। मेरे अनुमान से कम 8 गायकों को उन्होंने ये मौका दिया था। फिल्म टैक्सी ड्राइवर में ही उन्होंने जनमोहन बख्शी साहब को देवानंद के लिए गाने का मौका दिया था, आशा जी के साथ एक दो गाने में, जो देवानंद जी और कल्पना कार्तिक पर ही फिल्माया गया था। ये वही जगमोहन है जिन्होंने सपन साहब के साथ मिलकर कई फिल्मों में सपन जगमोहन के नाम से संगीत दिया था। सुनते हैं टैक्सी ड्राइवर के उस दो गाने को जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने।

0: है।
1: अब हम सुनेंगे 1957 की फिल्म दुश्मन से एक गीत। ये फिल्म क्वात्रा आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले राज ऋषि के निर्देशन में बनी थी। संगीत दिया था पंडित हुसैनलाल भगतराम की जोड़ी ने। इस गीत के बोल लिखे थे तनवीर नकवी साहब ने। इस गीत में देवानंद साहब के लिए प्लेबैक दिया था शिवदयाल बतीश साहब ने। आशा जी भी इस युगल गीत में आपको सुनने को मिलेंगी। आइए सुने।

जाऊंगा। ये गीत है फिल्म बारिश से, जिसका संगीत सी रामचंद्र साहब ने दिया था। सी रामचंद्र साहब अक्सर खुद भी गीत गाया करते थे और इस फिल्म में उन्होंने देवानंद साहब के लिए प्लेबैक दिया था। ये बहुत ही उम्दा गीत है। राजेंद्र किशन साहब ने इस गीत में बहुत ही खूबसूरत बोल लिखे हैं। ये सभी क्या एक से एक कलाकार थे, जाने कहां गए वो लोग और वो दिन। बारिश के इस गीत में क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं राजेंद्र किशन साहब ने। लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।

यदि देव साहब के साथ एसोसिएटेड सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स की बात की जाए तो जरूर किशोर साहब का नाम उनमें काफी ऊपर होगा। किशोर साहब का सबसे पहली हिट सोलो देव साहब की ही फिल्म जिद्दी से आई थी, लेकिन आज मैंने जिस फिल्म का गीत चुना है वो भी अपने समय में काफी चर्चित रही थी। यह फिल्म थी तीन देवियां, जिसमें देव साहब ने एक कवि का किरदार निभाया था और उनके साथ इस फिल्म में तीन तीन देवियां उनके ऑपोजिट थी, नंदा जी, कल्पना मोहन जी और सिमी ग्रेवाल। उसका ये बेहद पॉपुलर गीत आइए सुनते हैं, जिसका संगीत दिया था SD बर्मन ने और लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने।

कुछ लोग बताते हैं कि इस फिल्म का एक अंग्रेजी संस्करण ओ बॉय एंड थ्री गर्ल्स के नाम से भी प्रस्तावित किया गया था, जिसका संगीत आरडी बर्मन दे रहे थे, पर वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो गीत हमने अभी सुना, उसका एक दूसरा भाग 78 आरपीएम पर जरूर आया था, जिसे कम लोगों ने सुना होगा। तो आइए किशोर साहब की आवाज में उस दूसरे भाग को भी सुनते चलें।

देवानंद साहब के लिए रफी साहब ने भी बहुत गाया। देव साहब की पहली दो फिल्में हम एक हैं और मोहन के सभी गीतों के गायकों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं शर्तिया नहीं कह सकता कि रफी साहब ने इन दोनों फिल्मों के लिए उनके लिए गाया था या नहीं। लेकिन तीसरी फिल्म आगे बढ़ो में रफी साहब का एक डुएट जरूर था उस फिल्म की हीरोइन खुर्शीद जी के साथ। फिल्म के अभाव में हम ये नहीं कह सकते कि ये गीत देव साहब पर फिल्माया गया था या नहीं, लेकिन आने वाले सालों में कई गीत रफी साहब ने देवानंद के लिए गाए। जब देवानंद साहब का इंतकाल हुआ तो रफी साहब का गाया हुआ एक गीत ही सब और बज रहा था उन्हें याद करने के लिए। इस गीत को साहिर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है और कई लोग कहते हैं कि एवरग्रीन स्टार के जीवन की फिलॉसफी इस गीत में निहित है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म हम दोनों से। जयदेव का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, रफी साहब की आवाज में।

0: देवानंद साहब के प्लेबैक सिंगर्स की बात की जाती है तो हम एक ऐसे सिंगर को नहीं भूल सकते जिन्होंने देवानंद साहब के लिए जब भी गाया सुपरहिट गीत ही गाया। मैं बात कर रहा हूँ हेमंत कुमार साहब की। कई फिल्में थीं जिनमें हेमंत दा की आवाज देवानंद साहब के लिए हमें सुनाई दी। 16 साल, हाउस नंबर 44, सजा, मंजिल, जाल, पतिता, क्या क्या फिल्में थी और क्या क्या गीत। याद आ गई वो नशीली निगाहें, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, तेरी दुनिया में जीने से याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, कौन सा चुने और कौन सा ना चुने, सभी बहुत मजेदार थे। इन सब को छोड़ते हुए मैंने सोचा फिल्म मुनीम जी का एक गीत सुनाऊं आप सबको। मुनीम जी में एक बहुत खूबसूरत गीत था, दिल की उमंगे हैं जवां, जो गीता जी और प्राण ने इनके साथ गाया था। पर आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उस फिल्म का एक खूबसूरत सोलो। इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें जो एक मस्ती सुनने को मिलती है वो अलग ही है। SD बर्मन साहब के संगीत में शैलेंद्र के बोल, सुनते हैं शिवजी बिहाने चले।
1: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला,

हेमंत कुमार साहब की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी और कई दशकों तक सुनने वालों का दिल लुभाती रही। उनसे मिलते जुलती गायकी करने वाले कुछ कलाकार भी बंगाल में हुए, जिन्होंने उनके स्टाइल में ही गीत गाए और लोगों को पसंद भी आए। उन्हीं में से एक मिलती जुलती आवाज़ थी द्विजेन मुखर्जी साहब की। इन्होंने हिंदी फिल्म में भी इनके लिए प्लेबैक दिया था और वो फिल्म थी माया, जिसके लिए सलील चौधरी साहब ने कॉम्पोजिशंस की थी। मजरूह सुल्तान पुरी साहब ने एक खूबसूरत गीत लिखा था फिल्म माया के लिए, तो सुनते हैं ये गीत द्विजेन मुखर्जी की आवाज में।

देव साहब के लिए प्लेबैक देने वाले बंगाली गायकों को हम सुन ही रहे हैं, तो मन्ना बाबू को कैसे भूलें। मन्ना डे साहब ने इनके लिए कुछ फिल्मों में गीत गाए थे, एक थी उनमें मंजिल। लेकिन आज जो मैं आपको गीत सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी फिल्म से लिया गया है जो काफी समय तक अटकी रही थी और उसका कारण था उस फिल्म पर होने वाली एक मृत्यु। काफी समय केस चलता रहा, प्रोड्यूसर को फिल्म रिलीज और पूरी करने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन देव साहब की मदद से ये काम हो गया और वह फिल्म हमारे सामने पर्दे पर आ गई थी, जिसका नाम था किनारे किनारे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, पर इसके कुछ गीत बहुत खूबसूरत हैं। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो इसमें कई गीत कटे हुए थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गीत देव साहब पर पिक्चराइज थे या नहीं, लेकिन ये जो गीत था मन्ना डे साहब की आवाज में किनारे किनारे में जरूर शामिल था। विनोद देसाई ने भी इसके लिए गीत रिकॉर्ड किया था ये वाला, पर ये फिल्म में नहीं था, तो हम ये कह नहीं सकते कि विनोद देसाई ने उनके लिए गाया या नहीं, पर मन्ना डे साहब की आवाज में इसे जरूर सुनेंगे। और भी कलाकार हैं जिन्होंने देव साहब के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर गीत गाए, या फिर हमें वो प्रिंट नहीं मिलते, तो इसलिए यदि आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद भी कुछ गायक बाकी रह गए हैं जिन्होंने प्लेबैक किया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनते हैं मन्ना बाबू की आवाज में फिल्म किनारे किनारे का ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था प्रोड्यूसर न्याय शर्मा ने और जयदेव का संगीत था।

नई जनरेशन के भी कई गायकों ने देव साहब के लिए प्लेबैक दिया। उनमें से दो के गीत मैं इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगा। ये दोनों ही देव साहब की तरह पंजाबी थे। तो पहला जो गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो महेंद्र कपूर साहब की आवाज में है, जिन्होंने केवल एक ही फिल्म में देव साहब के लिए प्लेबैक दिया था। वो फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा। ये गीत महेंद्र कपूर साहब ने लता जी के साथ गाया था। शंकर जयकिशन का संगीत था और शैलेंद्र के बोल। सुनिए।

0: चलते चलते आपको एक ऐसा गीत छोड़े जा रहा हूँ जो आज भी रेडियो पर बहुत बजता है। मुख्यतः ये लता जी ने गाया था और पिक्चराइज था वैजंती माला पे, लेकिन देव साहब का भी इसमें अपियरेंस था और उनके लिए प्लेबैक दिया था भूपिंदर साहब ने। आप पहचान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जुअल थीफ के इस मशहूर गीत की। एस डी बर्मन साहब का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी जी के बोल। मुझे दीजिए इजाजत और आप आनंद लीजिए इस एवरग्रीन गीत का।
1: होटों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात जो दुहाई है दुहाई।

कार्यक्रम समाप्त करूंगा एक बोनस गीत से। मैं फिल्म काला पानी देख रहा था और उसमें नलिनी जी एक मुजरा करती हैं, आशा भोसले की आवाज है उनमें। सडनली मैंने नोटिस किया कि कुछ बोल देवानंद गा रहे हैं और वो आवाज तो सचिंदा की थी, यानी एसटी बर्मन ने उनके लिए प्लेबैक दिया था। बहुत कम लोग इस गीत को जानते होंगे, तो आप सभी के लिए मैं कार्यक्रम समाप्त करूंगा इसी गीत से जो 1958 की फिल्म काला पानी से है। गाया है आशा भोसले और एसटी बर्मन ने, संगीत सचिंदा का ही है और बोल है मजरू सुल्तानपुरी जी के। तो सुनिए ये गीत, आशा है आपको ये देवानंद स्पेशल पसंद आया होगा जिसमें उनके विभिन्न प्लेबैक सिंगर्स के गीत आपको सुनने को मिले।

तो मित्रों ये था एक यूनिक केस जहां एस डी बर्मन ने कुछ बोलों के लिए ही सही प्लेबैक दिया। आमतौर पर वे बैकग्राउंड गीत ही किया करते थे। इस अनोखी पेशकश के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सी यू सून।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: I don't think there's any love lost between those two.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती। ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: जी, ये अब्बास हसन बोल रहे हैं। आप आवाज FM सुनते रहिए।

0: from St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree. This is Hours
1: FM. एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: की आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Awaz FM.
5: What's cracking in the house? Do you wanna party? Yeah! It's your boy Mick

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Ours FM.

पाकिस्तान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Big thunder, lightning, the way you move is frightening.
4: Thunder!
3: Gotta knock
4: on wood.
3: See, we can do it all in this show. We can do it all in this show.

0: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Hours FM.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Hello, I'm Sapia Kaul. You are listening to Avaaz FM.

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया, अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: एक पल की लापरवाही, आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है।

0: focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
1: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
5: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
6: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
7: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
8: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
9: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोबी.
10: अस्सलाम वालेकुम.
9: वालेकुम सलाम.
10: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
9: हां जी, शुक्रिया.
10: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर शो, एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूमात उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से. मेहरबानी. तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं. तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है.
9: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये एक काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
10: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
9: थैंक यू वेरी मच.
10: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब इंजॉय कीजिएगा. और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे. इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
9: थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.
10: आई लव यू ऑल.

0: अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Hi, this is Abbas Hassan, and keep listening to Awaaz FM.
5: Nope.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Assalamualaikum. It's really nice to listen to your show. Some of the stuff you talk about is very intellectual in different languages, but I get the gist of most of it, and I like listening to the different tunes that you play.

0: लाइफ को अटकना नहीं आता तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: You're listening to
1: Hours FM.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: This is Natalie DeLuccio, and Sunse Rahi hai Awaz FM.

0: Awaaz FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Thea.
1: Hi, this is Anna Salman, and you're tuning to Awaaz FM. You can follow me on Instagram at Anna Salman Dar.
2: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: Har maa ke liye uska bachcha special hota hai. Aur ek taraf meri maa. जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझाओ बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं मगर फिर भी थैंक यू मां

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours FM.

0: hopefully there's any love lost between those two.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Kitna achha hai ki maa hamare liye har pal maujood hai. Shukriya ada karein. Mom ka.
5: Thank you, mom.